0: Indeed, it is we who will inherit the earth.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, Auto protected.

तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीनों दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल .com।

मैं हूँ रुबीना खान। सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में।

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी.
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester.
1: Leica Radio.

0: कैसे हैं साहब? की नदियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, मासूम होती हैं नदी, है ना? लेकिन नदी को इल्जाम देना, नदी को जो है झूठा कहना, कैसी अधूरी बात है। जी हाँ, कल दोपहर को 1 बजे आपको अधूरा छोड़ा था, आज मुकम्मल करेंगे। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रैडफोर्ड, गुड मॉर्निंग लीड्स एंड गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: सांसों में घुला प्यार का धुआं। कहते हैं कि जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं, जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं, मिलने आया भी तो कह दूंगा, मिलने आ भी गया तो कह दूंगा मुझे प्यास नहीं। मंगल की एक खूबसूरत सी और ठंडी ठंडी से सुबह।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे। लाइका रेडियो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरी डे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
2: The Cycle of Love from executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
3: I left behind everything I knew.
2: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
3: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
2: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
8: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hit maker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the body. Hollywood's radio partner, Leica Radio.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थियर, लो प्राइस, कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी अल्टरनेटिव। कैरेटिनो बेटर घी अवेलेबल इन टेस्कोस, एस्डा, मॉरिसन्स एंड लोकल ग्रोसरी स्टोर्स। कैरेटिनो बेटर घी।
1: On this week's Leica Extra podcast, we talk myths and misconceptions about raising debts, where Kush speaks to Meenal.
11: A right kind of leverage on your balance sheet is actually good. You cannot grow your business without having a good debt. Debt is not an enemy of your business.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: बचाना।
1: जी हाँ, तोहफा क्या, बस एक चाय की प्याली है, ताबिश की गरम गरम चाय की प्याली है,
0: बस प्यार के दो
1: और उसका पहला मीठा सिप
0: मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया।
1: हंसते रहो, गाते रहो, एक पल का जीना है साहब,
0: मेरे दिल
1: ये दिल है, इसका काम है गाना और बजाना। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, लाइक रेडियो ग्रेटर ब्रेडफोर्ड एंड लाइक रेडियो लीड।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: US dollar 1.35 1.35 Indian rupees mein 129 rupees 27 paise, Pakistani rupees mein 375 rupees 98 paise, Bangladeshi taka 166 taka 65 paise, Sri Lankan rupees 444 rupees 84 paise aur Afghani rupees 87 rupees 5 paise.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
4: LIKA Radio.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall walak pegam. कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई। दुबई के लिए बेहतरीन मराहत के साथ बहुत सारी ऑफर्स हैं, मगर टर्म्स कंडीशंस लागू होंगी, एटोल प्रोटेक्टेड हैं। नंबर इनका है 0208-574-8410।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio News Update.
1: LIKA Radio Greater Manchester से अब उर्दू की खास खास हेडलाइंस। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज भी इजाफा कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 45 मिलीलीटर बारिश, वासा हाई अलर्ट। मुतवक्का बारिशों के पेश नजर सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में एमरजेंसी नाफिज। नून लीग ने कहा कि पीटीआई की इस्लामाबाद पर यलगार से मसला हल नहीं होगा। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ की बारिश में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की तजवीज। और ईरानी फौज ने अमरीकी पायलट के बयानात पर मज़ाक़ खेज वीडियो बना डाली। अमरीका का खलाई मदार में हथियार तैनात करने का पहली बार बाज़ाब्ता एतराफ। एलवन मस्क का दावा है कि 2014 से पहले मस्नूई जहानत के खतरात पर गौर कर रहा हूं। सऊदी अरब की तेल की अहम पाइपलाइन बंद, आलमी मंडी पर बड़ा खतरा मंडलाने लगा। इमिग्रेशन पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया को एक ही रोज दो कानूनी झटके। सऊदी शहरों पर हौसियों के हमलों में 13 शहरी जख्मी। برطانوی وزیر اعظم اینڈی برہم کے والد انتقال کر گئے۔ تو یہ تو تھی اردو کی چند خاص خاص ہیڈ لائنز۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے لائک ریڈیو گریٹر مینچسٹر۔
2: ابن تابیش آن دی مڈ مارننگ شو
3: لائک ریڈیو۔
1: جی ہاں، ایک بار پھر لکی علی، ایک پل کا جینا، او سنم محبت کی قسم۔ Tuesday morning, Mangal ki subha. Welcome to Bradford and welcome to Leeds.

0: Gibbon at Tubbish on the Mid-Morning Show.
1: Like Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
2: जी हाँ, और सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 105 पाउंड 75 पेनिया 105 पाउंड 75 पेंस और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज हो गया 38,250 रूपए 38,250 रूपीज।
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com। ये है लाइका रेडियो, वन परफॉर्मर।
3: टीवी के सामने पॉसम से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
4: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
5: जिंदगी बर्बाद हो गई।
0: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट।
6: लंदन में फंक्शन रखा हुआ है।
4: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026,
0: 29th अक्टूबर ओवो अरेना वेम्बली लंदन, 31st अक्टूबर मैटियोली अरेना लेस्टर।
4: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी, फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस, एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर लाइव ऑन स्टेज इन द यूके।
0: प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिनेक्स ग्लोबल एंड टिम्स मीडिया प्रोडक्शंस,
4: सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग अवेयरनेस। टिकट्स आर ऑन सेल नाउ वाया टिकटमास्टर, इवेंटब्राइट एंड एएक्सएस।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 07585 801 801। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: No, sorry, mate.
9: No, we don't have that part.
8: Have you tried down the road?
10: We can get it in, but it might be for a few days.
11: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovan.
12: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
7: London, get ready for an unforgettable night.
13: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
13: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
13: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
14: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
14: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
16: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. A Leica Radio Classic plays now.
2: Right, Janab, welcome and welcome back. Tuesday morning, program ke pehle hisse ka pehla classic song, 80s ke zamane ka, VCR ka zamana. Pehla song ja raha hai, classic song, Ayaz bhai, bhai jaan, Ghulam Ali bhai, aur Yogesh bhai ke liye. जाने कहां कहां लोग किस किस तरह किस किस को देखते हैं

0: ख्वाबों की रानी, न जाने कब से तेरी तलाश है। फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम। चलिए जी शांत हो जाइए, प्रोग्राम को अपने रूपरेखा पे लेकर आते हैं वापस शराफत के साथ। बहुत उछल लिए, बहुत कूद लिए, मुझे पता है आप भी बहुत तेज ड्राइव कर रहे थे। शिराज भाई थम जाए, जरा थम जाए। जहीर आज तो चलाओ गाड़ी, कैमरे बहुत हैं। गुलाम अली भाई कहाँ निकल पड़े आप। चीमा भाई नेल्सन से निकले हैं या रॉजडेल से। अगर आपका काम दिन भर ड्राइव करना है और ड्राइव के दौरान आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज ड्राइविंग के दौरान अपना बहुत ख्याल रखा कीजिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है ड्राइव करते हुए रेडियो को सुनना बहुत अच्छा लगता है। खुशामदीद, अब बहुत ही मौदबाना सा सलाम आपकी खिदमत में इब्न ताबिश का। रब जलील के बाबरकत नाम से अपनी शुरुआत करते हैं बज़्म ताबिश की, जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो हुआ करता है रोजाना सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे के दरमियान मैनचेस्टर में, पूरे ग्रेटर मैनचेस्टर में, यॉर्कशायर में, लंकाशायर में और अब ब्रैडफोर्ड में। आज से जी हाँ, ब्रैडफोर्ड वालों को सलाम, खुशामदीद। ब्रैडफोर्ड में हमारे वैसे भी काफी लिस्टर्स हैं हमारे पुराने, जो हमें बहुत अरसे से सुनते हैं, लेकिन अगर आपने सुनना बंद कर दिया था तो दोबारा सुनना शुरू कर दीजिए। तारिक अजीज भाई और इश्तियाक साहब, मेरे बहुत पुराने दोस्तों में उनका शुमार होता है। और लीड्स में तो रोजाना हमारे साथ होते हैं मजर भाई। डीएबी जेब रेडियो के जरिए आप हमें सुनेंगे अब लायक रेडियो। हमारे तमाम शोज लायक रेडियो मैनचेस्टर के अब ब्रैडफोर्ड में और लीड्स में भी सुने जा सकेंगे। आज का रिडल, अच्छा जी, एबीसीडी किसको आती है, ए से लेकर जेड तक पूरी। हाँ, क्या आपको पता है एबीसीडी में एच के बाद क्या आता है? यस, इंग्लिश में एच के बाद क्या आता है, जल्दी से बताओ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI वालों का पैगाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, ऑनलाइन या फिर इनकी किसी ब्रांच में जाके अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं। ब्रिटिश पाउंड के बदले में बेहतरीन रेट देते हैं इनकी मोबाइल ऐप के जरिए। अगर आप रकम पहुंचाएंगे तो बहुत आपको फायदे मिलेंगे और बहुत अच्छा रेट देंगे। आज का रेट है 128.04 रुपए।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: ये है
3: Like Our Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
5: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel. At all protected. Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk. Ibn Tabish on Leica Radio Greater Manchester. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio Mobile App.

0: मुझको मोहब्बत आज भी है।
1: लाइक है रेडियो,
0: वहीद मुराद और शमीम आरा, फिल्म का नाम था ख्वाब और जिंदगी। मैंने भी वैसे आज सुबह उठने से कोई 15 मिनट पहले एक ख्वाब देखा था साहब। अब मैं ख्वाब तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं डर गया था। ऐसा होता है कभी कभी जब बहुत थकावट हो तो फिर उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। और ख्वाब आया था अंग्रेजी में, तो इसलिए हमने आपसे रिडल पूछा कि इंग्लिश में एच के बाद क्या आता है। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। उसके बाद जी और जी के बाद एच, एच के बाद क्या आता है ढूंढ तेरे जाओ। जमशेद भाई कहते हैं ताबिश भाई एच के बाद मैं आता हूं। कजूरी जी कहती हैं अभी सोच रही हूं, अभी तो मैंने चाय जो है आपकी भेजी हुई चाय की प्याली को मैं देख रही हूं कि इसमें आपने चीनी कितनी मिलाई है। बड़ी समझदार हैं आप। मलिका ने लिखा कि ताबिश सिंपल सी बात है, एच के बाद आई आएगा और कौन आएगा, आई आई में आई में आई। फरजाना नसीब भी कहती है वॉरिंगटन से आई। ऐसे लिखा है आपने जैसे इंसान की सुई छुप जाती है, तो लड़कियां अक्सर कहती हैं आई। 07703403020। मैं चाहता हूं कि मेरे पास आज आना चाहिए जवाब, ब्रेडफोर्ड से और लीड से भी मेरे पास जवाब आना चाहिए। 15 सितंबर आज की तारीख, हमारी डायरी के पन्ने पे कुछ नहीं लिखा।
1: From Greater Manchester to Greater London, we are Leica Radio.
0: जी हाँ, इंग्लिश में एच के बाद क्या आता है।

फिल्म का नाम साजन, एसपी बाला सुब्रमण्यम और ये गीत हम नाम करेंगे गुलाम अली भाई आपके। और अगला गीत हमें लेके जा रहा है 11 बजे की खबरों की जानेब। कुमार सानू, फिल्म का नाम खामोशी। खामोशी से जवाब दीजिए, इंग्लिश में आई के बाद क्या आता है? एज के बाद भाई, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश में एज के बाद क्या आता है?

बेताब है तमन्ना और बेचैन है नजर। अलका याग्निक और कुमार सानू, फिल्म का नाम दरार। उससे पहले जो सॉन्ग सुना था आपने वो था फिल्म ताल से, हमने आपके लिए लिया था, सोनू निगम ने गाया था उस गीत।

0: पैंतरे बदल बदल के इंसान, कभी इंसान अपना हुलिया बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कुछ लोग रोज कपड़े बदलते हैं, कुछ लोग रोजाना रिडल बदलते हैं। लंदन से इम्तियाज भाई ने कहा, थाविश भाई क्या पूछ लिया आपने यार, थोड़े बहुत पढ़ लिख लेते ना, अंग्रेजी सीख लेते तो आपको आज हमसे नहीं पूछना पड़ता। हाँ रियली बता देना प्लीज, इंग्लिश में एज के बाद क्या आता है। समीर मिर्ची वाला कहते हैं, यार मुझे भी नहीं पता ताविश भाई, अब आपका प्रोग्राम एंड तक सुनना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आज के रिडल का जवाब क्या है। मिसेस नाज हमें सुन रही है ओल्डहम में, ओल्डहम में शिराज भाई हैं, एंथोनी वारिंगटन में, फरजाना नसीब और नईम मलिक, वकार रंकल, मुदस्सर सज्जाद, सैयद जहीर, जाहिद अब्बास और सिर्फ अब्बास, और खुशबू चौधरी, अयाज भाई, गजाला जबी, अदनान और यासिर।
1: Like a Radio. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
8: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
7: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
9: Hi, this is Saleem.
10: Hi, this is Saleem.
11: Hi, this is Suleiman.
12: Hi, this is Suleiman.
11: From Saleem Suleiman. Keep listening to
13: Leica Radio.
1: A Leica Radio classic plays now.
14: Abhi alvida mat kaho.

0: चाहे मुलाकात होगी
1: तो होगी।
0: मैंने जो सुबह ख्वाब देखा फरीद भाई आप बिना महिंदर कपूर का ये मधुर गीत नौशाद अली भाई बनले में आपके नाम हुआ।
2: Like a radio.
0: फिल्म का नाम था निकाह 1982 VCR का जमाना सितंबर महीने की आज 15 तारीख। वंस अगेन गुड मॉर्निंग आप सुन रहे हैं लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से मेरा प्रोग्राम बज़्मे ताबिश जो कि अब सुना जा रहा है वेस्ट यॉर्कशायर में ब्रेडफोर्ड हडल्सफील्ड और लीड्स में DAB जेब रेडियो के जरिए एकदम साफ और शफाफ आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर ऐसा लगे जैसे इब्ने ताबिश आपके साथ आपके पास बैठ के आपसे बात कर रहा हो। कहते हैं इंतजार करना कितना खूबसूरत है इंतजार करना कितना खूबसूरत है अगर उसका नतीजा तुम हो तो। अरे वाह आसिम के बच्चे मत करो इंतजार मत करो कभी कभी इंतजार बेसूध होता है और इस इंतजार की जलन सैयद जहीर जानता है। क्यों जहीर और मलिका कहती हैं ताबिश भाई क्या पूछ बैठे हैं आप। रुखसाना आमिर हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया। अंजुम जमान उमर वालेकुम अस्सलाम इमरान राणा नसीर भट्टी लेस्बन में पहलवानों के पहलवान सज्जाद पहलवान और शुमायल बहन हमजा बरी में चंदा रौजिल में ही अदनान हमारे साथ हैं। अदनान खैर मकदम फरमाइश कोई नहीं होगी आज। मजहब भाई लीड्स में हैं कहते हैं कोई नाहिद अख्तर का सॉन्ग अभी तक क्यों नहीं लगाया लगाते हैं भाई लगाते हैं।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency rate US dollar 1.35 Indian rupees mein 129 rupees 27 paise Pakistani rupees mein 375 rupees 98 paise Bangladeshi taka 167 taka 65 paise Sri Lankan rupees 444 rupees 84 paise aur Afghani rupees 87 rupees 5 paise.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. You're listening to LIKA Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM. Previously known as Asian Sound Radio.
3: LIKA Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: जी हाँ गोल्ड का रेट हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत होगी 105 pounds 75 pence यानी 105 pounds 75 pennies पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज हो गया 38,250 रुपए 38,250 रुपीस।
2: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट विजिट hartyhanks.com This is Leica Radio.
0: Leica Radio, Greater Manchester, Leica Radio, West Yorkshire, Bradford, Huddersfield and Leeds. Catch live and exclusive cricket action between India and Afghanistan on JioStar. 3-1 day international from Sunday 13 September until Thursday 17 September from 2:50 p.m. Every day download and subscribe JioStar's app now available Hotstar on Sky TV pe jaake

0: Mega Extra Podcast Update.
1: Black Radio की पॉडकास्ट अपडेट आपको बता दें कि इस हफ्ते हमारे एपिसोड नंबर 33 को होस्ट कर रही हैं खुश और बात कर रही हैं ये मिसकंसेप्शन अबाउट रेसिंग पे। तो लिहाजा इस बड़े अहम मौजू पे ये बातचीत हो रही है। हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे आप जाके हमारी कारगुजारियां देखा करें कि लाइक रेडियो की टीम आखिर कर क्या रही है। जी हाँ, हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा।
2: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
3: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियाँ लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, RSV और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन। कौन और कैसे वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHS GM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHS GM विंटर वैक्सीनेशंस।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल
7: Protected. चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales@likeamedia.co.uk.
9: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

किशोर कुमार और आशा भोसले जी का मधुर गीत। फिल्म का नाम था मिल गई मंजिल मुझे और ये गीत हमसे फरमाइश किया था अबरार भाई आपने। अच्छा गीत था, बहुत अरसे के बाद सुना मैंने।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: Right, jenab, SBI walon ko paigham India apne pyaron ko rakam pahunchaye online ya inki kisi branch mein jaye. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूनो एसबीआई मोबाइल ऐप, इसके जरिए आप रकम पहुंचाएं आज के रेट है 128.04 रुपए।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। Like a radio.
2: Right, जनाब, वेलकम एंड खुश आमदीद। रॉबिन भाई उठ गए सुबह के 6:40 न्यूयॉर्क का स्टैंडर्ड टाइम और बर्तानिया का मियारी वक्त सुबह के 11:40 बल्कि 41 हो गए अब तो, पाकिस्तान में 3:40 और इंडिया में 4:10। बहुत शुक्रिया आसिम, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी तबीयत की फिक्र रहती है, अपना ख्याल रखा करो। जरीन हमारे साथ हैं आश्टन में, सीमा हमारे साथ हैं, काशिफ भाई आश्टन लाइन वाले, काशिफ अब्बासी एक होते हैं लंदन में, शायरा जी होती हैं लंदन में हमारे साथ, और शहजाद कहते हैं इस गीत को सुन के तुम जो मिले कहते हैं वाह अच्छा लगा, ताबीर आपको भी अच्छा लगा तुम जो मिले। आसिया बहन हमारे साथ हैं मुस्तकिल रॉशडेल में, उमर हयात मलिक आपने हमें शायद वॉइस मैसेज भेजा है, मुझे अभी वक्त नहीं मिला, देखता हूँ जरा वक्त निकालता हूँ तो आपकी फिर मैं गुफ्तगू सुनता हूँ। आज के रिडल, जी आज के रिडल का जवाब लिखा है जी नौशाद भाई ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम साबिश भाई, टुडे रिडल द आंसर इज आई। हाँ मैंने पूछा था कि अंग्रेजी में इंग्लिश में एबीसीडी आप जरा पढ़े, एबीसीडी एज तक आए, एज के बाद क्या आता है। इम्तियाज भाई लंदन में, मोहम्मद अदनान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हाँ जी वालेकुम सलाम। अमन हमारे साथ हैं, और हाँ अमन काफी जहीन है, अमन ने हमें जवाब सही दिया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी सॉन्ग आपका इंतजार कर रहा है।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: अहमद रुश्दी साहब की मधुर आवाज, बहुत अर्ली 80s के जमाने की फिल्म थी नया सवेरा,

0: एक भटके हुए राही को
1: मिल गए
0: कारवां मिल गया
1: तो ये लगता है।
0: इस सॉन्ग में भी इतनी तेज बारिश और यहाँ मैंने अपने विंडो से खिड़की की ओर से देखा तो यहाँ भी बारिश
1: तो
0: फिल्म का नाम था हंसते जख्म। लता मंगेशकर और रफी साहब का ये गीत। नसीर भट्टी आपके नाम, ताबीर आपके नाम और रॉबिन भाई।
2: लाइक अ रेडियो।
0: शकील ममदानी भाई प्रेस्टन में हमारे साथ हैं। शकील भाई कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं आपकी? उमर हयात मलिक कहते हैं मेरी तरफ से इस सॉन्ग को ताबिश भाई तमाम उबर ड्राइवर्स के नाम कर दें। अच्छा कर दिया जी, कर दिया। अयूबी भाई ने सलाम कहा है सबको। अयूबी भाई वालेकुम सलाम। जी हाँ, यकीनन आपका अपना गाना। आज का हमारा रिडल ये था साहब कि इंग्लिश में एज के बाद क्या आता है। मोहम्मद अदनान, आपने हमें दिल भेजा है, खाली दिल, क्या करूं मैं इस दिल का, जो मेरे पास है फिर मैं उसका क्या करूंगा। फरजाना नसीब कहती है ताबिश भाई आप भूल जाते हैं भाई। अब ये तो है, अब आपने मुझे सुबह लिखा था कि आपके भांजे हैं जीशान अली, आपकी डायरी के पन्ने पे उनका नाम लिखा है भाई कि आज उनकी बर्थडे है। तो कोई बात नहीं, हमारी जानिब से बहुत बहुत उनके जन्मदिन पे जीशान, कहां हो जीशान से कहो रेडियो ऑन करे। आप इस वक्त खाने में कीमा और फूल मखाने बना रही हैं। अरे अरे अरे, मैंने तो कभी नहीं खाए। रॉबिन भाई ने लिखा है थैंक यू ताबिश भाई। ताहिर सिद्दीक भाई हमारे साथ होते हैं लंदन में और लंदनी में हमारे साथ हैं, अब उठ रही हैं धीरे धीरे। उज्मा और योगेश भाई आपकी पसंद प्रोग्राम में शामिल है, बस टेंशन लेने का नहीं, ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। इंग्लिश में एज के बाद क्या आता है।
2: Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds. This is Leica Radio.
3: The top stories this hour. The public inquiry, which has looked into events at the hospital where Lucy Letby killed seven babies, will publish its findings this lunchtime. The Thirlwall report has examined how the Countess of Chester NHS Trust responded to concerns raised by staff and how it dealt with the parents of the victims. The US has for the first time confirmed it's deployed weapons in space. The country's Air Force Secretary says they'll be used to defend American personnel, but they haven't provided details about the munitions and their capabilities or when they were put into orbit. Mark Hilborn leads the Security Research Group.
4: We have a long-standing treaty called the Outer Space Treaty, which was actually signed in 1967, and that bans explicitly weapons of mass destruction, but it doesn't explicitly ban any other types of weapons. But there need to be more rules, and as we see space, the technology, the numbers of actors, commercial companies.
3: The Sussexes are on a hunt for another school in the UK due to safety issues. It's understood their security team raised concerns about the practicalities of the current arrangements for the two children. Villagers in an area of Oxfordshire are voting in a referendum on whether to leave the UK. People living in Piddington are opposing an asylum centre opening nearby, which would accommodate more than 1,200 men. The government says housing them at a former military base is more suitable than at hotels. But Tim McNally, chair of Piddington Parish Council, says it's unacceptable.
5: If it was the other way around and we had 350 of us and 10 people assimilating into our community, that would work. But 1,258 men, we are going to be assimilating into their lifestyle. We are already having to consider the paradigm shift of security for our children, for our families.
3: Job vacancies have fallen to a five-year low, with particular losses in the leisure and hospitality sectors. Unemployment remained at 4.9% in the 3 months to July. And London's lost its bid to host the World Athletics Championships in 2029. Instead, Nairobi is the place that's been selected. From Sky News, that's the latest.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Right, janab, mustaqil barish ho rahi hai, bahut tez barish ho rahi hai Manchester mein aur temperature ruk gaya hai 17 degree pe aage aur kyunki aaj ka hamare yahan ka ye maximum jo hai wo temperature hai. Baral ji har jagah barish ho rahi hai pure Yorkshire mein, khaas taur pe is waqt agar aap kahein to Huddersfield mein aur Bradford mein aur Leeds mein sab jagah mausam abralud hai aur kaafi tez barish ho rahi hai, jabki temperature ki agar baat ki jaye to चलें पहले आपको कराची लेके चलते हैं. कराची में 34, लाहौर में 33 और न्यूयॉर्क में इस वक्त हो रहा है 14 डिग्री बट क्लियर.
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. Leica
0: Radio. Tuesday afternoon. लेकिन अगर आपकी अभी अभी सुबह हुई है तो हम आपसे कहेंगे गुड मॉर्निंग रॉबिन भाई, गुड मॉर्निंग उस्मान जी और वो तमाम लोग जो उठे तो हैं सुबह से मेरे साथ, मगर नाश्ता आप करेंगे भाई कर लो बात. अंग्रेजी में कहते हैं कि जी हाँ, इंग्लिश में एज के बाद क्या आता है, ये हमारा आज का रिडल और बैक टू बैक दो इंतहाई रोमांटिक गाने.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester. A new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica.
6: Kuch to kaho.

0: कुछ ना कहो बस कहते रहो। अरे शिराज भाई आप भी भूल जाते हैं मेरी तरह। आपने कहा ताबिश भाई मैं कल भूल गया था, कल 14 सितंबर थी, मेरी बेटी की कल बर्थडे थी, जन्मदिन था। ओहो हो, देखिए बेटियों के मामले में ना मैं बड़ा सीरियस इंसान हूँ, बेटियों के साथ ज्यादतियों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरहाल मेरी जानिब से आपकी बिटिया रानी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अब बोलो क्या कहना है।
1: Across Greater Manchester on 1377, 963 AM and DAB. And now also in Bradford and Leeds. This is Leica Radio.
0: रॉबिन भाई ये आपका गीत है, मुझे पता है आपके नाम।

0: कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैडम नूरजहां की गजल बहुत सारे साथियों को बहुत अच्छी लगी, और जिनको अच्छी नहीं लगी वो भी मेरी तरफ से अपने नाम कर लें। कहते हैं ये तुम मोहब्बत ही पे हैरान हुए जाते हो, तुम तो मोहब्बत ही पे हैरान हुए जाते हो। एक दो काम अभी और भी आते हैं मुझे, तुम तो मोहब्बत पे ही हैरान हुए जाते हो। एक दो और भी काम है जो मुझे आते हैं। मैं कभी जोद फरामोश हुआ करता था। मुझको तो याद नहीं, लोग बताते हैं मुझे, और कहते हैं कि कम तो होता ही नहीं लुत्फ ताल्लुक उनसे, कम तो होता ही नहीं लुत्फ ताल्लुक उनसे। मुंह पे सुनते हैं मेरी, और दिल में सुनाते हैं मुझे। भाई वाह। मैंने सुबह कहा था कि जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं, हाय गहरा समंदर, जिस समंदर को मेरे दर्द का एहसास नहीं, मिलने आया भी तो कह दूंगा मुझे प्यास नहीं। और एक मुलाकात में खुलता नहीं हूं मैं लोगों पर, एक मुलाकात में खुलता नहीं हूं मैं लोगों पर। तुमको तो लगता है तबीयत मेरी एहसास नहीं। और बात यह कि तुम अगर हमसे बिछड़ने में ना उजलत करते, तुम अगर हमसे बिछड़ने में ना उजलत करते, हम इबादत की तरह तुमसे मोहब्बत करते। मंगल की दोपहर 12:30 न्यूयॉर्क में सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और पाकिस्तान में शाम के 4:30, इंडिया में तकरीबन 5। सितंबर महीने की आज 15 है। आप सुन रहे हैं मेरे प्रोग्राम बज़्मे ताबिश, जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो होता है। जिन लोगों की सुबह है उनके लिए गुड मॉर्निंग, जिनकी दोपहर है उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जिनकी शाम होने वाली है शाम से पहले आना, धूप सारी ढल चुकी हो। ब्लैक रेडियो नेटवर्क अब सुना जा रहा है हमारे यहाँ पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में। आपको बता दें आज से, जी हाँ, 15 सितंबर से ब्रेडफोर्ड, हडर्सफील्ड और लीड्स में आप हमें सुनते हैं DAB टेप रेडियो पर।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: राइट जनाब, US डॉलर 1.3135, इंडियन रुपीज में 129.27, पाकिस्तानी रुपीज में 375.98, बांग्लादेशी टका 167.65, श्रीलंकन रुपीज 444.84, और अफगानी रुपीज 87.05।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall वालों की तरफ से बेहतरीन रेट देते हैं आपको, और खासतौर पे जी हाँ दुबई की तैयारी अगर आपने कर ली है दुबई जाने के लिए, वेरी कम्पेटिटिव कहते हैं हॉलीडे डील्स आपको ये दे रहे हैं, और टर्म्स कंडीशन जो हैं वो यकीनन लागू होंगी, एट ऑल प्रोटेक्टेड हैं, और नंबर इनका है 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: राइट जनाब, गोल्ड का रेट हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 105 पाउंड 75 पेनिया 105 पाउंड 75 पेनी पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज हो गया 38,250 रुपए 38,250 रुपीज।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Like a radio. Like
0: a radio. Right. 12:30 बज गए. Live read. Big Boss is back. जी हाँ, सलमान खान को कौन कौन प्यार करता है? हर अंदाज में, हर रूप में कौन कौन उन्हें देखना चाहता है? T20 season of Big Boss is back. Hosted by सलमान खान. रोजाना 9:30 रात को कलर टीवी पे आप देख सकते हैं, जिसके साथ तावन कर रहे हैं जियो हॉट स्टार वाले. Yes. जियो हॉट स्टार हर एपिसोड को आप रोजाना देख सकते हैं 24 घंटे हफ्ते के साथ होते बिग बॉस 20 हाउस में स्काई चैनल पर.
1: Like a radio.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel. At all protected.

0: Cutthroat Cake Hilari every Saturday and Sunday at 7:30 PM on Colours. And watch it anytime on Jio Hotstar.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
2: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
4: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन.
5: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@laikamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161250822. दैट इज 0161250822. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेशन.
4: From Bury to Trafford, this is Leica Radio, Greater Manchester. Punjabi Hit of the Hour with Tabish.

0: आसिफ बिलाल और आबिद परवीन, दोनों के दोनों लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। बहुत अरसे के बाद हमसे कभी कभार हमजा फरमाइश करते हैं। हमजा, आपने हमसे सुबह फरमाइश की थी इसकी और हम तलाश में थे कि ये किसी तरह मिल जाए मुझे, और ये मुझे मिल गया तो मैंने आपके लिए प्ले किया। बेहतरीन आरिफाना कलाम आबिद परवीन और नसीबुलाल का हमजा तुम्हारे नाम। और अब हम ले रहे हैं प्रोग्राम बज़्मे ताबिश की थर्ड एंड फाइनल अवर की लास्ट ब्रेक। वापिस आके फिर आपसे कुछ बातें होंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, jara main SBI walon ka paigham. State Bank of India कहते हैं कि ऑनलाइन या किसी इनकी ब्रांच में जाके आप रकम पहुंचा सकते हैं अपने प्यारों को, लेकिन अगर बेहतरीन रेट चाहते हैं आप तो इनकी मोबाइल ऐप के जरिए रकम पहुंचाएं। यूनो एसबीआई मोबाइल ऐप यूके के जरिए आज का रेट है 128.04 इंडियन रुपीस।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। ये है लाइका रेडियो। This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11.
6: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
1: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Up next, Ravina Khan with the magazine show, Leica Radio Greater Manchester. A Leica Radio classic. Plays now.
0: हाँ जी, मैंने पूछा था कि अंग्रेजी में इंग्लिश में एच के बाद क्या आता है, अब जाके लोगों की अकल में आया। तो इतनी मोटी अकल के लोग।

0: Hacker Radio.
1: तो बात तो हमने तो खाली इंग्लिश में पूछा था आपसे कि इंग्लिश में एज के बाद क्या आता है, यहाँ तो बहुत सारी जबानों की बात हो गई भाई कजोरी जी, अंग्रेजी में, बंगाली में, पंजाबी में है भाई। बहरहाल ये सॉन्ग इतने सारे लोगों की पसंद था, ये भी भाई आपकी पसंद था मुझे पता है। इम्तियाज भाई लंदन में, आप शिराज भाई बहुत शुक्रिया, जीते रहे आपकी बिटिया रानी की कल बर्थडे थी, और कल हमारी एक और बहना है, हमारी बहन है नजमा, कराची में रहती हैं, हमारे दोस्त हैं लंदन में इम्तियाज भाई, उनकी बहन है, कल उनकी बर्थडे, तो हमें आप याद दिलाइएगा इम्तियाज भाई, सुबह आते याद दिलाइएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है ये। नेदरलैंड में हमारे साथ होते हैं रोजाना, आज भी थे ताहिर भाई, ताहिर जावेद, हलीमा है हमारे साथ, हलीमा जी ब्लैकबर्न में शमीम बानो बेगानी, गुलाम अली भाई, कजूरी जी ने कहा खुदा हाफिज, हाँ ताबीर ने कहा मैं चलू, यस जाने वाले को कौन रोक सकता है, मलिका कहती है हाँ। बिग बॉस सुन के आपको अच्छा लगा क्योंकि सलमान खान को आप बहुत लाइक करती हो, जरीन जीत गई भाई, जरीन बहुत खुश हुई है जवाब देकर। अच्छा सब लोगों ने बिल्कुल वही जवाब दिया था कि भाई एज के बाद आई आता है, आई का मतलब उर्दू में होता है मैं, है ना, माई सेल्फ, लेकिन बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया आखिर कि भाई इंग्लिश में एज के बाद कुछ नहीं आता, यकीन नहीं आता तो इंग्लिश में अभी आप इंग्लिश लिख के देख लीजिए, इंग्लिश में लिखें आप इंग्लिश ENGLISH, एज के बाद तो कुछ भी नहीं आता। तो बहरहाल जिन लोगों ने जवाब दिए शाबाश जरीन, और वो तमाम साथी तमाम दोस्त हमारी बहनें जिन्होंने सही जवाब दिया, मैं अब यहां से चला, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बुध की सुबह, फी अमान अल्लाह, तो खुदा पामान।
0: Ibn Tabish, rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
1: नहीं दख्तर और मेडिसिन की आवाज, प्रोग्राम का आखिरी तड़का, see you tomorrow, इंशाल्लाह।

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: आज यहाँ लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर मैगजीन शो में दो गीत आपके लिए प्ले हो चुके हैं. उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किए होंगे. पहला गीत था अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनो ना चलते चलते फिल्म से, और ये फिल्म थी 2003 की फिल्म, और सेकंड सॉन्ग वाज फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर टू 2026 की फिल्म दिलजीत दोसांझ की आवाज इश्क दा चेहरा. सो बैक टू बैक टू सॉन्ग्स आपके लिए प्ले किए गए, और आपको बता दें कि आज भी द मैगजीन शो फुली जैम पैक प्रोग्राम है. कहानी भी है, शॉर्ट स्टोरी भी है, खबर पर नजर भी है, बहुत ही जबरदस्ती प्लेलिस्ट भी तैयार रखी है बिल्कुल आपके लिए. और आज आपको बता दें कि 15 सितंबर है, 15th of September. सो कल से गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन है. ये गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है. प्रॉस्पेरिटी इनके साथ एट्रीब्यूटेड है और गुड फॉर्च्यून के लिए. तो 10 डेज की सेलिब्रेशन चल रही है, और इसके साथ साथ 15 सितंबर को आज ऑब्जर्व किया जाता है एक डे जिसमें ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जाता है. आज का ज़माना बड़ा खूबसूरत ज़माना है कि अगर आप रेगुलर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए तो ऑनलाइन आपके पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरीके से आप अपने नॉलेज में अपने अवेयरनेस में इजाफा कर सकते हैं ऑनलाइन. और ये जो फ़ोन आपके हाथ में है ये बड़े ही काम की चीज़ है. ये थी 15th of September के हवाले से एक दो बातें. प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे.
0: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it might be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
0: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स.

0: Petrol stations or community spaces.
1: Rich, authentic taste every single time.
0: Royal Chai, brewed for business.
1: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
3: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
2: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
4: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
5: Hey, boy!
4: Coast Guard, we're stuck.
6: Okay, help's on its way.
4: Hold on, mate.
7: Shoes, tide, phone.
4: Back before dark, love. Okay.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
9: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
10: आप सुन रहे हैं लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. इस वक्त जोहर की अजान का वक्त हो चुका है और अपने सामने को बता दूं कि आप अभी अजान सुनेंगे और ये अजान मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में रहने वालों के लिए है और दीगर इलाकों में जब ये अजान सुनी जाएगी तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने मुकामी मस्जिद के टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा.
11: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है. दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो. विजिट कीजिए tarikhalal.com.

0: तारिक हलाल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com.
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: बस तू है, एक तू है, शिवन्या चौहान और शशवन सचदेव की आवाज है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, यूएस डॉलर आपको मिलेंगे 1 पाउंड के एक्सचेंज में 1.35, इंडियन रुपीज 129.27, पाकिस्तानी रुपीज 375.70, बांग्लादेशी टकर्स 167.65 और श्रीलंकन रुपीज 444.84, अफगानी 87.04 अफगानी।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.

0: से जी लाइक रेडियो और द मैगजीन शो में आप क्लासिक सॉन्ग सुन रहे थे। मुकेश की आवाज में सुना आपने, फिल्म का नाम था फूल बने अंगारे, शानदार है भरे, क्या ब्यूटीफुल ट्रैक था, आप सभी सुनने वालों के लिए प्ले किया गया। और बहुत से ऐसे ही गीत जो आपने बहुत दिनों से शायद नहीं सुने हैं वो आज आप सुनेंगे। और हमेशा कोशिश होती है कोई ना कोई किसी कोने खुदरे से लाइब्रेरी के जो बहुत ही कहीं दूर कहीं कोने में पड़ा हो कोई ऐसा सॉन्ग जो अच्छा भी हो, जिस पर नजरे करम नहीं पड़ी हो उस पर नजरे करम डाली जाए। लेकिन ये सॉन्ग तो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल सॉन्ग था, क्लासिक सॉन्ग की शायरी और आवाज और सब कुछ ऑल टुगेदर जबरदस्त होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी शमूलियत भी प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त होती है। 07703403020 पर आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और जब मैसेज आता है तो वो ग्रीन हो जाता है, तो ग्रीन जो है वो लाइफ की का सिंबल होता है और इसके साथ ही बाहर का सिंबल होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम के लिए कहना चाहिए कि फिर अगेन वही लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ, सिंबल होता है क्या करें, कहाँ से इतने लफ्ज ढूंढ के लाए, चलने दो जी, अब देखे ना डिक्शनरी ही है ना। लेकिन आपसे ये मैं पूछूंगी जरूर, हम लोग जब भी कोई चीज खाते पीते हैं, हमारी कोई पसंद होती है, पसंद की चीज आप शौक से खाते हैं, जो पसंद की चीज नहीं होती है उसको आप हाफ हार्टेडली खाते हैं, खाते तो फिर भी है मजबूरी अगर हो, अदरवाइज छोड़ देते हैं। कोई ऐसा खाना जो आप मिक्स करके खाते हैं और आपको बहुत मजा आता है, वो कहते हैं ना घुला मिला देते हैं इधर का माल उधर, एक होता है जब आप बफे में जाते हैं तो क़यामत खेज प्लेट होती है। लेकिन क्या आप खानों को अपनी ओन पे खाते हैं या मिला जुला के खाते हैं, एक खाना दाल गोश्त मिला जुला के।
1: ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: अलकायाग्निक और कुमासानी की आवाजें, हम हैं राही प्यार के
1: Like a Radio
0: और इन द रियल सेंस हमें राही प्यार के, क्योंकि ना सिर्फ ये कि आप लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में आप ग्रेटर मैनचेस्टर को सुन रहे हैं, बल्कि आज से हमें आप सुन रहे हैं लीड्स में भी. सो हेलो लीड्स, और इसके साथ साथ ब्रेडफोर्ड में भी. हेलो ब्रेडफोर्ड, और ब्रेडफोर्ड के सामने के लिए हमारी आवाज नई नहीं है, पहले भी आप सुनते रहे हैं, लेकिन आज खास तौर पर ब्रेडफोर्ड के तमाम लोगों को हम दावत देते हैं कि प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए 07703403020 पर. यह आपका अपना लाइका रेडियो, जिसको आप पहले एशियन साउंड रेडियो के नाम से जानते थे, और अब हमारी आवाज लीड्स में भी पहुंचेगी और ब्रेडफोर्ड में भी पहुंचेगी. सो लाइका रेडियो नेटवर्क अब बिगर एंड बिगर होता चला जा रहा है, और इसमें हम राही प्यार के जो भी गीत सुनाए ना, वो इन द रियल सेंस आपको एंटरटेन करेंगे. इन और इसके साथ ही अवेयरनेस का सिलसिला भी जारी रहता है. कहते हैं कि रेडियो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन रेडियो से मिलती है, कान से कान में पहुँचती है. मतलब आपके आपको विजुअल्स नहीं होते, लेकिन आपके जो समात है वो अटेंटिव होती है, फोकस्ड होती है, और खास तौर पर कोई बात ऐसी हो जो आपके मतलब की हो, फिर ते गोली होर हो जाती है जी. सो ब्रेडफोर्ड लीड्स ग्रेटर मैनचेस्टर, आप सबको खुशामदीद प्रोग्राम में. आप सबके लिए रूना लैला की आवाज में पाकिस्तानी ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, और मैं रुबीना खान द मैगजीन शो लेकर मंडे टू थर्सडे हमारा और आपका साथ रहता है. ग्रेटर मैनचेस्टर के लोग जानते हैं, और अब ब्रेडफोर्ड एंड लीड्स के लोगों को बता रही हूँ मैं लाइव एंड डायरेक्ट. सो पाकिस्तानी सॉन्ग राइट नाउ राइट हियर.
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज़.

खूबसूरत आवाज है रूना लैला की, लेकिन ये सॉन्ग खास तौर पर बड़ा फेमिनिन लगता है। सुनिए, जिस तरह होता है ना हाय हाय हाय हाय वाला, सदके जावा वाला नहीं, हाय। जाने वाले इतना बता दो, ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: Leica Radio.
1: सुनील रूनाला ला की आवाज आपने एंजॉय की, आपके मैसेजेस भी मिलते जा रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा है ये गीत. सो आपके मैसेजेस शामिल करूंगी नेक्स्ट आवर में ताकि जरा तसल्ली से हो, अभी कुछ टाइम कम है. सो नेक्स्ट आवर में, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अब हम ग्रेटर मैनचेस्टर के अलावा ब्रेडफोर्ड और लीड्स में भी हमारी आवाज जाएगी, लाइका रेडियो की आवाज सुनी जा सकेगी. तो ये हमारे सुनने वालों को भी मैं एक टास्क दे रही हूँ, आपकी भी एक तरह से आपको काम दे रही हूँ. और वो ये है टास्क आपका कि जब भी आप किसी से मिले तो जरूर बता दें कि अब लाइका रेडियो कहाँ कहाँ सुना जाता है, और अब लाइका रेडियो वही है जो एशियन साउंड रेडियो पहले होता था. इत्तेफाक हुआ मुझे पिछले दिनों कुछ लोगों से मिलने का, तो एक महफिल थी, समझे कि ग्रुप ऑफ 30 वुमेन था, तो उसमें एक लेडी ने कहा कि अच्छा आप रेडियो पर अभी हैं, तो मैंने कहा क्या मतलब आपका. तो उसी महफिल में और जो 29 लेडीज थी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ये नंबर नहीं है, उन्होंने कहा रुबीना होती है ना मंडे टू फ्राइडे 1 to 4 PM, उनको सारी मेरी लिस्ट पता थी और बाकी लोगों ने भी रेकन किया, लेकिन एक लेडी को नहीं पता था कि एशियन साउंड रेडियो की जगह अब लाइका रेडियो है. तो जाहिर है जब आप ऐसे सर्च करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइका रेडियो, तो फिर आपको नहीं मिलता, आपको ए से एशियन कोई और रेडियो मिलता है जिसमें कुछ और तरह के गाने चल रहे होते हैं. तो मुझे ये कुछ लोगों ने ऐसे बताया, कम लोग हैं लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है कि आप जरूर बताएं कि अब लाइका रेडियो है और ये वही है जिसको आप पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं और आपको बहुत पसंद है. सो जी चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ.
0: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So, अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा 129.27, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
7: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October, and marking its 25th anniversary, Dil Chahta Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
8: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
9: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963 5.

0: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
1: जी, पहले दो गीतों का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दें. बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन. शफकत अमानत अली जी. शफकत अमानत अली की आवाज थी जो आपने सुना, मैं तो तेरे संग ही रहना, शादी में जरूर आना, ये फिल्म का नाम था. सो शफकत अमानत अली का यह है कि जो गीत है उसको भी हाफ गजल की सूरत बदल जाती है उनके गीत में. जैसे कि इश्क का रंग सफेद पिया, तो ऐसा लगता है हम गजल सुन रहे हैं, नहीं गाना सुन रहे हैं. तो ये शफकत अमानत अली खान की आवाज है जिसमें गजल और सॉन्ग दोनों का रंग झलकता है. सो जी, पहला गीत था मैं तो तेरे संग ही रहना वे, और दूसरा सॉन्ग था ये बिंदिया शिंदिया का चक्कर था उसमें है. So, अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज जोड़ी नंबर

0: जिनमें आपने वॉइस नोट भी सेंड किए हैं और अपने टेक्स्ट के जरिए भी बताया है, वो मैं शामिल करती हूँ। लेकिन एक टेस्टी ट्रैक को जरा सुनवा ले और उसके बाद आपसे बात करते हैं। इतनी देर में आप लोग भी बताइए कि कौन सा ऐसा फूड कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंजर्स जो आप खाते हैं और आपको मजा आता है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: की आवाज में चंद चंद गाने हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, आइकॉनिक हैं और जब सुने अच्छे ही लगते हैं। एक बार मिलो हमसे 1987 की फिल्म का टाइटल ट्रैक, बड़ी फराक दिल इसमें ऑफर है, 100 बार मिलेंगे।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज में। मेरा नाम है, हम तो आपको सलमा के नाम से ही जानते हैं। मोहब्बत आपका निकनेम हो सकता है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: The Magazine Show with Robina Khan.
0: और जी हाँ, लाइक रेडियो मैसेज किया है हमें बानो आपने बोल्टन से, और आपने लिखा है हाय लाइक इज द ओनली स्टेशन फॉर मी, और आपने साथ में ब्यूटीफुल इमोजी सेंड की है। बानो थैंक यू सो मच। और शिराज आपका मैसेज बहुत जबरदस्त है रिगार्डिंग टू दैट स्ट्रेंजेस्ट फूड कॉम्बिनेशन, और आपने तो ऐसा लग रहा था मैसेज में जैसे कि आप अभी वो खा रहे हैं। आपको पसंद है दाल में गरम गरम दाल जो आपकी अम्मी पकाती थी, और उसमें रोटी के टुकड़े डालकर उसको अच्छी तरह से मिला के यानी घोलम घोटाला करके, और उसमें उसको खाना आपको पसंद है, और हरी मिर्चों का अचार या आम अचार उसमें डालकर आप कहते हैं कि एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, और वो आपको आपको किसी पूरी दूसरी दुनिया में ले गया। आपका वॉइस नोट बहुत अच्छा है, आप वॉइस नोट सेंड करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि अब कुछ लोग वॉइस नोट करते हैं, ज्यादातर नहीं करते, ज्यादातर लिख कर भेजते हैं, लेकिन आपका मैसेज मैं हो सकता है अभी शामिल कर पाऊं तो जरूर करूंगी, क्योंकि आपने बड़े मजे ले लेके ऐसा लगता है दाल रोटी को खा ही लिया है अभी अभी इमेजिनेशन में बैठे बिठाए। सो इसके बाद हमारे पास मैसेज है एंड खाना, आपने मैसेज किया और आपको म्यूजिक जबरदस्त लग रहा है, सो बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू। रुखसाना अफजल आपने लिखा कि आई एम हियर रुबीना जी, गुड आफ्टरनून टू यू टू, हैव अ गुड डे आपके लिए भी। मोइना आपने लिखा है आई ईट एप्पल विद पीनट बटर एंड रियली एंजॉय इट। मोइना जी जबरदस्त, पीनट बटर के जो लोग शौकीन होते हैं मैंने ये देखा है वो इसको बस वो इश्क की हद तक चाहते हैं पीनट बटर के लवर जो होते हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि आप पीनट बटर एंड एप्पल के साथ उसको खाती हैं। नसीर अहमद भट्टी आपने क्या लिखा है जी, आपने फिरनी और खीर खाने का मजा आता है, फिरनी खीर ये तो एक ही चीज है, तकरीबन छोटा मोटा फर्क है इनमें कि फिरनी में पिसी हुई पिसे हुए चावल होते हैं, खीर में थोड़े मोटे चावल होते हैं। सो एनीवेज आप इसके साथ अगर आपने वो कहते हैं ना एक उर्दू में लफ्ज है गर्दम घोटाला कट, उसके साथ कुछ और मिक्स करना हो तो फिर आप क्या मिक्स करेंगे, फिरनी को क्या कॉम्बिनेशन करेंगे, बल्कि सवैया जो है मुझे बताइए सवैया का भी क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये जो शीर खुरमा या सवैया हो सकती है। जमशेद चौधरी आपने लिखा है कि बिरयानी विद करी, हालांकि बिरयानी के अंदर बहुत कुछ होता है पर पर्सन और पर अब जब ये इमोजी ये जो लिखा होता है ना टाइपिंग बड़ा मसला पड़ जाता है, सालन डालकर रायता और सैलेड के साथ वाह, तो आपको बिरयानी प्लस सालन और प्लस उसमें रायता यानी वैसे अच्छी बात है, ह्यूज प्लेट बन जाती होगी इससे। और आपको सलमा आगा की आवाज़ पसंद आई और मुझे भी ये आवाज़ बहुत पसंद आई। सुफियाना आपका मैसेज है और आपने लिखा है ब्यूटीफुल डे है, सो जी हैव अ नाइस डे टू यू, और सलमा आगा की आवाज़ आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है।
3: क्योंकि सांस भी कभी,
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी, एवरी डे एट 9 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार। Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: चल थॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
8: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 01612508222 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk।
2: Lyka Radio, Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM.

0: The Magazine Show with Rubina Khan.
1: खबर पर नजर with Rubina Khan.
2: और जी खबर पर नजर और आज खबर पर पड़ी है तो खबरों पर नजर पड़ी है. पहली खबर जो है वो इसलिए शामिल कर रही हूँ कि हमारी खासतौर पर एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा पसंद करती है जमाइमा को. जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी उन्होंने दूसरी शादी की है 62 इयर्स आयरिश बिजनेसमैन कैमरून से और जमाइमा के भाई ने भी इस शादी की तस्दीक की है. जमाइमा गोल्डस्मिथ की पहली शादी साबिक वजीर आजम इमरान खान से हुई थी. दोनों की शादी 1995 में हुई थी और अब उनकी दूसरी शादी हुई है. अवार्ड याफ्ता प्रोड्यूसर जमाइमा और आयरिश स्ट्रेलवी कारोबारी शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि इनकी मुलाकात फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों के दौरान काम के दौरान हुई थी. सो ये एक खबर थी. और दूसरी खबर पहाड़ों जंगलों के बारे में है जिसमें एक खबर यूं है कि चीन में महकमा जंगलात के माहिरीन ने शानदार कारनामा अंजाम दिया है और चीनी सूबे में शदीद बारिशों से गिरने वाले 624 इयर्स पुराने दरख्त को दोबारा खड़ा कर दिया. इतना पुराना दरख्त 624 इयर्स ओल्ड दरख्त जो था वो हालिया तूफान और बारिशों में गिर गया और वहां पर महकमा जंगलात के माहिरीन ने मुकामी हुकाम ने दिन रात काम करते हुए दरख्त की जड़ों को नम रखा. जड़ें जब जाहिर बाहर आ जाती हैं, जमीन से बाहर आ जाती हैं और खुश्क हो जाती हैं तो फिर वो दोबारा उगती नहीं, लेकिन उन्होंने उसको नम रखा, मॉइस्ट रखा और उसके बाद 100 टन से जायद वजनी दरख्त दोबारा सीधा खड़ा हो गया. अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, इतना हैवी और इतना पुराना दरख्त इसको वापस उन्होंने खड़ा कर दिया. और कहते ये हैं कि उन्होंने बड़ी जांफेशानी से किया और सारे के सारे माहिरीन जब यहाँ पर आकर काम कर रहे थे तो बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि इतने पुराने दरख्त को, जैसे कि एक कौमी विरसा होता है कि उसको आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, इसी तरह ये दरख्त भी हैं. दरख्त तो कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ है और बरगद का दरख्त तो आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त होता है, इसकी छांव होती है, बड़ा गहरा होता है, बड़े इसके पत्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करता है. ये अलग बात है कि सुनने में आता है कि जो दरख्त है और जो बहुत घना होता है उसके नीचे की जो ज़मीन है उस पर कुछ नहीं उगता. ये भी एक मुहावरा है कि दरख्त के नीचे जो है, घने दरख्त के नीचे कुछ नहीं उगता क्योंकि ना सनलाइट पहुंचती है, इतना डेंस होता है. पूरी दुनिया को तो वो बहुत उसके लिए फायदेमंद होता है, ऑक्सीजन और एवरीथिंग, लेकिन उसके जड़ों के करीब जो एरिया होता है वो बेचारा बंजर ही रहता है. सो एनीवेज अब आपको लेकर चलती हूँ एक गीत की तरफ जो कि मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में है. पंजाबी सॉन्ग है, हमारे सुनने वालों को अच्छा लगता है तो हम क्यों नहीं प्ले करें. हम हुमैरा हुसैन, आपने लिखा है कि आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं सॉन्ग्स, सो आपके नाम ये पंजाबी सॉन्ग करते हैं.
0: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.

0: आजकल जो काम खुद करते हैं यानी डांस करने का या नचने टपने का, वो इमोजीज कर देती हैं। कितनी आसानी हो गई है।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: So, जी आपको बता दें गोल्ड रेट आज क्या है। 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 103.26 और ये 24 कैरेट गोल्ड का है रेट।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica
0: Radio. Yeah. Leica Radio. जी हाँ, लाइक रेडियो पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इस इन्फॉर्मेशन को मैं ओपन करना चाहती हूँ। ओके, सो जी हमें आप सुन रहे हैं मैनचेस्टर में, ग्रेटर मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में और लीड्स में। सो हैलो टू एवरीवन। और इस वक्त बावजूद कोशिश के मैं इसको ओपन नहीं कर सकी, जो कि मुझे अभी आई एम सपोज टू रीड। आई विल टेक 1, 2, 3। नो, चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
0: So, इस पॉडकास्ट अपडेट को हम आप तक पहुंचा दें, और वो ये है कि नई पॉडकास्ट है, टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट रेजिंग डेट्स। सो इस पॉडकास्ट को होस्ट किया है खुश ने, और खुश ने बातचीत की है फाउंडर ऑफ समारिया ग्लोबल फाइनेंस से, जिनका नाम है बेनाल सेम्बर, और उन्होंने बात की है कि ये क्या मिथ्स है अराउंड बिजनेसेस के डेट्स के लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। दे एक्सप्लोर व्हाई businesses should plan funding before cash flow become a problem. So, role kya hai financial decision lene mein, aur kyun human judgment jo hai abhi bhi essential hai kisi bhi baat ko ya business ke jo ideas hain uske liye ek human judgment abhi bhi bahut zaruri hai. Beshak ke bahut si cheeze find out kar li jati hain, AI se madad li jati hai, lekin jo insaan ki judgment hoti hai aur wo bhi khas taur pe business ke liye, wo kyun important hai, क्यों एसेंशियल है, ये सब बातें, और इससे इसके अलावा भी बहुत जो एक तरह से जामे किस्म की बातचीत है वो आप सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। सो डू लिसन टू इट।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, द मैगजीन शो विद रुबीना खान। लाइका रेडियो।
2: बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान, तब हंस तू मेरी जान।
3: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11.
10: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11.
12: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
14: This is Alka Yagnik.
15: Hey everyone, this is Arman Malik here.
16: Hi guys, this is Taha Shubhadusha.
17: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
18: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Leica Radio.
19: Leica Radio.
20: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio, Greater Manchester.
1: Leica Radio.
0: और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कैच लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार 3-1 डे इंटरनेशनल फ्रॉम संडे 13 सितंबर से अंटिल थर्सडे 17 सितंबर तक और ये शुरू है फ्रॉम 2:50 PM डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ जियो हॉटस्टार ऐप अवेलेबल है ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: So, according to probation, Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now.
9: Leica Radio.
0: Alka Yagnik Yavaz. 90s throwback. Sangaram 1993 ke film.

0: Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
1: अपने तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से वार्म वेलकम है जी। मौसम कैसा है? मुझे तो लगता है अच्छा है, बड़ा पुरसकून सा है और शायद खूबसूरत तो होता ही है, क्यों इसको बुरा कहना है हमने। ब्यूटीफुल वेदर है और ना सर्दी है ना गर्मी है और बारिश भी सिर्फ 10% है, तो चांस लिया जा सकता है कि बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी अम्ब्रेला के आप थोड़ी देर भीग भी जाए बंदा तो क्या फर्क पड़ता है। सो बाज लोग बहुत मोहतात होते हैं, वो बिल्कुल अम्ब्रेला के बगैर निकलते नहीं घर से, और कुछ लोग होते हैं जो बर्फबारी में भी और मूसलाधार बारिश में भी चल रहे होते हैं, कोई पता ही नहीं उनको कि बारिश हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए, बेखबर। बेखबरी भी कभी कभी बहुत अच्छी होती है। सो जी, प्रोग्राम में दो गीत हमने आपके लिए प्ले किए। दिल ने ये कहा है दिल से, ये गीत जो है धड़कन फिल्म से, 2000 की फिल्म से था, यानी कि एज फ्रॉम एशियन साउंड रेडियो टू लाइका रेडियो नेटवर्क और लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ब्रेडफर्ड एंड लीड्स। ये गीत कभी से लेकर अभी तक बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, चंगा गीत है जी। सो उसके बाद दूसरा गीत, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, और आज मौसम ऐसा है हवा मेरे ख्याल पतंग को कहीं ना कहीं ले जाएगी। हवा ऐसी है कि पतंग को अपनी सिमट देगी। सो आपके मैसेज हैं और बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली ईसा, आपने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजमेंट, आपका शुक्रिया कि आप हिस्सा लेते हैं प्रोग्राम में और आपको अच्छा लगता है। वजात हाशमी, आपका मैसेज अभी मिला और आपने कहा कि नाइस शो एंड सॉन्ग्स एज ऑलवेज, यस करेक्ट कर लिया आपने, गुड या ओके, नेक्स्ट सॉन्ग वो भी अच्छा है। Let's listen to
0: The Magazine Show with Robina Khan.
1: ऐसा लगता है कुछ कहना है फिर चुप कर जाना है। जी, here it goes.

0: लाइका रेडियो।
1: जी हाँ, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, और अब लाइका रेडियो की आवाज पहुंची ब्रेडफोर्ड एंड लीड्स तक भी। सो लीड्स एंड ब्रेडफोर्ड के लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मलिक, आपने लिखा है कि साड़ी गड्डी ते केड़ी गड्डी है तुहाड़ी, मैं नहीं पढ़ सकी की लिखा है तुसी, पर नॉट लैम्बोर्गिनी। कोई नहीं गल जी, जिस गाड़ी में भी आप बैठेंगी वो लैम्बोर्गिनी ही तो बन जाएगी। और क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगी और इंजॉय करें। आप मुझे कह रही हैं, मैं आपको कह रही हूँ जी, तुसी भी इंजॉय कर लिया करो कभी कदार, वरना ज्यादातर हम लोग इंजॉयमेंट को जरा एक बोझ समझते। नहीं जी, सीधे सीधे कम करो, काम करो और काम करो।
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-96-6357-57 to arrange your meeting.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 0208574-8410। साफो ट्रेवल, at all protected.
8: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
9: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
0: Advertise your service here. 0161-250-8222. Leica Radio, Greater Manchester.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: The Magazine Show with Robina Khan. Short, heart-touching stories with Robina Khan.
1: जी, वक्त हो रहा है एक कहानी का, और वो भी बहुत शॉर्ट और बहुत हार्ट टचिंग। आज की कहानी का उन्वान टाइटल है बादशाह और आसमान को छूने वाला दरख्त, यानी किंग एंड स्काई हाई दरख्त या ट्री। सो कहते हैं बहुत पुराने जमाने में एक बादशाह था जिसे अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपनी शान शौकत पर बहुत नाज था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, दरबारी वो जो कोर्टमैन होते हैं, कि मैं ऐसा दरख्त देखना चाहता हूं जिसकी चोटी आसमान को छूती हो, बहुत ऊंचा दरख्त हो, क्योंकि बादशाह बस इस तरह से उसकी मेंटेलिटी थी कि उसको हर चीज बिग चाहिए, एलिगेंट चाहिए, ग्रैंड चाहिए। तो उसने कहा दरख्त भी ऐसा हो जो आसमान को छू रहा हो। तो दो दरबारी थे, वो हैरान हो गए। बहरहाल बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स मुझे ऐसा दरख्त दिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये बादशाह की बड़ा स्टेटमेंट होती थी, बड़ी जो है ना रेगुलर स्टेटमेंट है, जो शख्स मुझे ये दिखाएगा वो दिखाएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहरहाल लोग जंगलों में गए, पहाड़ों पर चढ़े, दूर दूर तक तलाश की, मगर ऐसा कोई दरख्त ना मिला। कई दिन गुजर गए, फिर एक सुबह एक छोटी सी लड़की बादशाह के दरबार में आई। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको वो दरख्त दिखाने आई हूँ जिसकी तलाश में आपने पूरी सल्तनत लगा दी है। बादशाह फौरन उसके साथ चल पड़ा। बड़ी अच्छी बात है, वैसे बादशाह चलते तो नहीं होते, लेकिन इस कहानी में बादशाह साथ चल पड़ा। लड़की उसे शहर से बाहर एक आम से दरख्त के पास ले गई। बादशाह ने दरख्त को देखा और हंस पड़ा, ये तो कोई खास दरख्त नहीं, इसकी चोटी तो आसमान से बहुत दूर है, ये क्या दिखा दिया? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, आपने दरख्त की बुलंदी देखी है लेकिन इसकी पहुंच नहीं देखी। बादशाह खामोश हो गया कि पता नहीं अब क्या कहने वाली है। लड़की ने ऊपर शाखों की तरफ इशारा किया, उस एक ऊंची शाख पर एक परिंदा बैठा हुआ था, वो उड़ा और आसमान की तरफ बुलंद हो गया। लड़की बोली, दरख्त खुद आसमान को नहीं छूता लेकिन वो परिंदे को आसमान तक पहुंचने का सहारा देता है, इसके फल से नई जिंदगी पैदा होती है, इसका साया मुसाफिर को आराम देता है और इसके बीज आने वाली नस्लों के लिए दरख्त बन जाते हैं। बादशाह कुछ देर इस दरख्त को देखता रहा, फिर इसने आहिस्ता से कहा, मैं ऊंचाई तलाश कर रहा था, यानी फिजिकल ऊंचाई, कि कितनी कोई ग्रैंड चीज हो तो वो पूरा असर होती है, लेकिन असल में ऊंचाई ये है कि आप किसी को कितना मदद करते हैं और कितना उसको ऊंचा उठाने में काम करते हैं। बादशाह ने लड़की को इनाम दिया और दरख्त को कटने से हमेशा के लिए महफूज कर दिया, क्योंकि वो दूसरों के काम आ रहा था। तो इसका जो मॉरल है वो बहुत ब्यूटीफुल है कि बड़ा वो नहीं जो सबसे ऊंचा है, बड़ा वो है जो दूसरों को बुलंद होने का मौका दे। कभी कभी हम जिंदगी में अपनी ऊंचाई नापते रहते हैं, जबकि असल सवाल ये होना चाहिए कि मेरे बाद मेरे साए में कितने लोग आगे बढ़ सकेंगे, या मैं जिंदगी में क्या ऐसा करके जा रहा हूं कि आने वालों के लिए कुछ भी उसमें से मददगार साबित हो पाएगा। चलते हैं एक नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ।
0: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite show.

0: क्यों दूर दूर रंदे ओ हुजूर मेरे कोलो ब्यूटीफुल ट्रैक बाय शौकत अली पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनका ताल्लुक मलकवाल से था, मलकवाल पाकिस्तान से।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: गोल्ड रेट आपको बता दें 24 कैरेट और 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 103 पाउंड 26 पेंस।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com। दिस इज Leica रेडियो।
0: सो जी, दिस इज लाइक अ रेडियो और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है एंटरटेनमेंट के हवाले से। तो पहले सबसे है संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदसानी लाइव परफॉर्म करेंगे। जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदसानी, सिंग्स सिंगर अमन ट्रिका एंड मयूरी पटियालिया, संडे 27th September एट लेस्टर डी मॉनफोर हॉल। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक रेडियो नेटवर्क। और इसके साथ ही उस्ताद राहत फतेह अली खान का जो शो है वो TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फतेह अली खान, एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को ऑन हिज 30 साल डेथ एनिवर्सरी पर। वन डे ओनली, संडे 18th April 2027 एट O2 लंदन रेडियो पार्टनर, अगेन लाइक रेडियो। उदित नारायण का शो और उनके साथ उनके बेटे आदित्य नारायण होंगे जो कि बॉलीवुड लेजेंड हैं और परफॉर्म करेंगे अपने बेटे के साथ एट OVO अरीना वेमले ऑन संडे 20 दिसंबर को। टिकट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक रेडियो नेटवर्क। फिर लखविंदर अवडाली लाइव इन कॉन्सर्ट, पंजाबी लेजेंड लखविंदर अवडाली, फ्राइडे 16 अक्टूबर 16th October एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लॉ, और संडे को होंगे 18th October एट ICC बर्मिंघम में। सो सुनील ग्रोवर लाइव, ये जो जीनियस है रियल सेंस में कॉमेडी के, सुनील ग्रोवर लाइव परफॉर्म करेंगे लंदन में एट OVO अरीना वेमले ऑन थर्सडे 29th October एट लेस्टर एट मेटियाली अरीना ऑन सैटरडे 31st October। टिकट्स अवेलेबल हैं AXS और इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर से। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक रेडियो नेटवर्क। कविता कृष्णा मूर्ति, और जब ये मैं पढ़ रही हूँ ये एंटरटेनमेंट की सारी न्यूज, तो मैं सोच रही हूँ वो एक शेर है ना कि इलाही एक दिल किस किस को दूँ, हजारों बुत हैं और हिंदुस्तान है, कहाँ कहाँ जाऊँ किसको छोड़ूँ। यानी कि एक से बढ़कर एक लाइनअप है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। और आजकल ये कोई खास ही महीने है जिसमें सबको कोई आ भी रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, और परफॉर्म कर रहे हैं। कविता कृष्णामूर्ति कितना बड़ा नाम है, लाइव द लेजेंडरी कविता कृष्णामूर्ति परफॉर्म करेंगी एट रॉयल एल्बर्ट हॉल में संडे 1st November को। और ये शो जो है ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल, और टिकट्स अवेलेबल हैं वेन्यू बॉक्स ऑफिस। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक रेडियो नेटवर्क। और फिर राजस्थान लाइक रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड राजस्थान, डिटेल एट laikaradio.com। सो अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए हो तो laikaradio.com पर आप जाकर देख सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको याद आ रहे कि कौन सी डेट किस कॉन्सर्ट के लिए थी तो लाइक रेडियो की वेबसाइट पे देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर बिग बॉस की अनाउंसमेंट है, बिग बॉस इज बैक, द 20वां सीजन है के बिग बॉस दोबारा आया है। और इसमें होस्ट करेंगे सलमान खान और शो एयर होता है एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स TV एंड जियो हॉट स्टार। और आपको बता दें कि एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉट स्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। जियो हॉट स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन एप ऑन Sky TV। सो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने आपके लिए प्ले की।
1: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
1: Ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
3: Winter, a season of fun and family times you don't want to miss. But it also brings flu, RSV and other viruses that can lead to serious illness and even time in hospital. Thankfully, vaccines are the safest way to keep everyone protected, from little ones and teens to older people and those who need extra care, like if you're pregnant. Find out more about who can get the winter vaccines and how. Search NHS GM Winter Vaccinations. That's NHS GM Winter Vaccinations.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate. No bill shock and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: Royal Chai lai hai, smart solution for your business.
13: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
13: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
14: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Have you noticed the way fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester.
17: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना. The Ritu Sharma Show में every weekend 10 a.m. to 1 p.m. on Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands पर.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आज इस द वीक है अमाल मलिक और इस गीत में बहुत सी दूसरी आवाजें भी थी, सोनोनी गंभीर है, अमाल मलिक तो है, एंड देन नीति मोहन की भी आवाजें, अरमान मलिक की भी आवाजें। फिल्म का नाम मुबारका, 2017 की फिल्म थी।
1: Rabina Khan, now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio Greater Manchester. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, चलिए बात करते हैं मनी टॉक की, बात कर लेते हैं। आज आपको 1 pound के एक्सचेंज में मिलेगा US डॉलर 1.3435, इंडियन रुपीज 129.37, पाकिस्तानी रुपीज 375.70, बांग्लादेशी टकास 167.65, श्रीलंकन रुपीज 444.84, अफगानी 87.04 अफगानीस। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप, टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Rabina Khan.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: द बॉय इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
10: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner, Leica Radio.
1: RizKhan, next with Drive.
11: Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. The Magazine Show with Rabina Khan.
0: سو جی یہ تھا ہمارا آج کا دا میگزین شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, کل دوپہر ایک بار پھر سے ملوں گی آپ سے ایک سے لے کر چار بجے تک دا میگزین شو میں. اور ابھی جے زیب ول بی سٹنگ ان فار ریز خان. روبینہ خان کو اجازت, بائے فار ناؤ. بہت ہی بیوٹیفل ٹریک ہے آپ سب کے نام.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.

0: बैटर माइक्रोवेव।
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।

0: साउथाउल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथाउल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
1: साउथाउल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस डिसम्बर।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके आए हो मेरे।
1: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: ऐसा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

0: This is Leica Radio. This is Leica.
1: Hi, hi, hi. Punjabi gana sun ke kinna acha lagda hai. पंजाबी की जो होती है सेंस ऑफ ह्यूमर जो होती है पंजाबियों की, आए हाय हाय मजा आ जाता है. बेबी कम एंड टेक अ चांस, आई एम मुंडा एफिशिएंट, चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस. वेरी गुड इवनिंग सजाद पलवान भाई, की हाल है? ठीक ठाक. सलाम टू यू एज वेल, गुड आफ्टरनून. आप कह रहे हैं इन योर गॉर्जियस वे एज ऑलवेज, सर जी एक्सलेंट शो फ्रॉम एक्रिंगटन लैंकेशायर एंड विशिंग यू द सेम. वालेकुम सलाम. और आपने भी इंजॉय किया होगा पंजाबी वाला गाना. गड्डी हो नवी पारे बुड्ढी हो पुरानी, हाय हाय बड़ा मजा आता है ये आरिफ लाहार की आवाज. पंजाबी ठेठ पंजाबी इसको कहते हैं, ठेठ पंजाबी, पंजाब वाली पंजाबी. लव इट. And that's the vibe we're coming with. It's a vibe. I love that track as well by Bacha. We're going to be playing lots of music like this. और आपके साथ शेयर भी करते हैं न्यूज, आपके साथ गपशप जिस तरह अभी सजाद भाई के साथ हुई है, आपके साथ गपशप भी होगी. और आप भी हमारे साथ गपशप करें. Wherever you are in the north, I can say that now. As I said previously, we can say that now because this is not just going out to Greater Manchester, it's going out to West Yorkshire. हमारे जो भाई बहन हैं Yorkshire में वो भी आज सुन रहे हैं. खुश आमदेद आप सब लोगों को. और दिली सलाम आप सबको. एंड एज माय नानी, लवली नानी यूज्ड टू से, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे.
0: Leica Radio. Traffic and travel.
2: I'm Samantha Dean. The M6 northbound 1.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साफो ट्रेवल
6: Protected.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com limited offer terms and conditions apply
9: hi this is akshay kumar
10: and
9: you're listening to Leica radio

0: S5's queuing due to an earlier accident involving a bus and a car from Old Mill Street to Pollard Street. And at Ashton Underline, the A6140 Wellington Road, there's congestion due to traffic light failure at the A627 Oldham Road. Approach with care.
1: Drive is sponsored by Pepe's. With over 260 stores nationwide, we're closer than you think. Fresh, flame-grilled chicken with a choice of six delicious marinades. Simply Pepe-licious. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: सर्दी का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियां लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, आरएसवी और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन, कौन और कैसे वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, all protected.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
1: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
1: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.

0: Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Your live spot price for gold in the UK per gram at 24 carat is approximately 103.3.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. This is Leica Radio. This is Leica Radio News Update.
1: A newly engaged mum has hit back at cruel online trolls who branded her fiancé's Blackpool roller coaster proposal as sad and low-end. Nicole and Derek are self-confessed Blackpool Pleasure Beach super fans. So when Derek decided to pop the question, he knew exactly where to wanted to do it. A 34-year-old mechanic secretly arranged with theme park staff to get exclusive early access to the Avalanche roller coaster before the gates even opened. He told Nicole they were just going to look at the station's inner workings before suddenly dropping down on one knee. Nicole said she was completely taken aback and overwhelmed by the perfect moment. But after the Pleasure Beach Resort shared a joyful picture of the newly engaged couple on Facebook, the cruel comments quickly rolled in. The trolls branded the proposal sad and low end, with one mocking the choice of venue by saying it was surely all downhill from there. But Nicole refuses to let the bitter remarks ruin her incredible memory. I don't really take much notice of the negative comments, and I've not even really engaged with them at all, she said. She pointed out that the Avalanche was the very first roller coaster she ever went on as a six-year-old, meaning the ride holds huge sentimental value. After the proposal, the couple were treated to a glass of champagne and 20 minutes of exclusive ride time all to themselves. The pair are now hoping to get married within the next year and are currently considering hosting their wedding in Blackpool.
0: This is Leica Radio. Drive is sponsored by Pepe's. Gauchujang flavor on every order. New at Pepe's for a limited time only. So Pepe-licious.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: One performer.
3: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है, एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@likeamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 01612508222, दैट इज 01612508222। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन।
10: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: क्या बात है, कितना प्यारा फरमाइशी गीत है। मेरा मतलब है आप में से किसी ने फरमाइश नहीं किया, लेकिन गीत में फरमाइश की जा रही है ना, मुझे 9 लाख मंगा दे। सोने का भाव चेक किया है आपने?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: 1 lakh बनाना मुश्किल है, 9 लाख। तो आपको बता दें कि your £1 in British sterling today can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और लीजिए भी हमेशा वाले सिलसिले के साथ अनीसा नासिर, वेरी मच हासिर, पूरे 10 बजे तक आपका और मेरा साथ है। रिज खान और सैंडी शाजी अब तक आपका साथ निभा रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया। कल आपकी उनसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल तो मुझसे मिलिए, मुझे तो आपसे मिलकर खुशी होती है, आपको मुझसे मिलकर खुशी होती है नहीं, ये आप तय करेंगे और मुझे मैसेज भिजवाएंगे और मैसेज में ये भी बताएंगे कि गीतों में क्या कॉमन है।
1: अनीसा नासिर Live across Greater Manchester with The Big Show. Like a radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया तिलका पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हंस तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।

पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए, तू देखे जहां पलट के हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके, हट तेरा रंग है।

0: जाल में चमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
3: और भी कल तक जिनका रंग नशीला अंग नशीला और पता नहीं क्या क्या बताया जाता था उनके लिए कहा जाता था. कैटरीना कैफ की बात कर रही हूँ. आज एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है और उसमें उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है. यहाँ तक कि उनके हस्बैंड विकी की उनको माँ से जो है वो क्या कहूँ तुलना की जा रही है कि वो जी अपनी हस्बैंड की माँ लग रही हैं, ये लग रही हैं, वो लग रही हैं. हम लोग क्यों इतने जालिम हैं यार, हम लोग इतने बेदर्द क्यों हैं? मतलब हमें इस तरह की तनकीद करके क्या मिलता है? अब वक्त के साथ अगर औरत का रंग रूप बदलता है तो ये तो एक नेचुरल फैक्ट है भाई, बदलता है तो बदलता है. अब इतना क्रिटिसाइज करना इस बात को लेकर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एनीवेज लीजिए, हम आपको एक जरूरी इतला पहुंचा देते हैं. ये इतला तो आपने सुबह से सुनी रखी होगी और ये जो है ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसे मिस ना करें. फाइनल फ्यू डेज टू गो टू दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क. इट टेक्स प्लेस एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर. डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM. याद रहे. और फिर जो मेन परफॉर्मेंस है वो शुरू होगी 6:15 PM से और ये रहेगी 9:30 PM तक जारी. टिकट्स का बंदोबस्त कीजिए diwalistory.com के जरिए.
1: This is Laika Radio.
3: और ये भी बताते चलें भाई किसने सही और किसने गलत जवाब अब तक पहुंचाए हैं हम तक. तो सबसे पहले मिसेस के आज तो आपने कमाल कर दिया. सबसे पहले आपने सही बूझा, बिल्कुल सही यही जवाब चाहिए था. फवाद जी, मीनाक्षी जी, मकबूल जी, सरोज जोशी जी. सरोज जी बड़े दिनों के बाद आपने मैसेज भिजवाया. मंजीत संगर जी, मेरी बहुत प्यारी रेगुलर लिसनर एंड कंट्रीब्यूटर, आपका जवाब भी सही है. अमनदीप कौर जी, आपसे भी शिकायत है, बहुत दिनों के बाद आपने आज मैसेज भेजा. वीना जी, लुबना जी, विजय गुडोरी जी, दीनी जी, अंसर जी, अंजुम जी, प्रतिभा जी, चौधरी फरीद अहमद जी, अमिता जी, गुल जी. गुल जी बिल्कुल आपने वो बूझा जो मुझे चाहिए था, वही बात कर रही हूं मैं. सपना जी, आपका भी जवाब सही है. और अगर नहीं सही तो सबसे पहले बताएं किसका नहीं सही. अब तो घर में भी आप चिल्ला रहे होंगे मनु जी का नहीं होगा. हाँ जी, मनु जी का ही सही नहीं है. ताहिर

0: हाँ जी, क्या हुआ फिर? वही जो होना था, तोची जी, सईदा जी, दिनेश पोपट जी और दिलीप सरोज जी, आपके भी जवाब बात बिल्कुल सही है। आज की थीम में ज्वेलरी शामिल रही। कुछ लोग पायल से आगे ही नहीं बढ़े, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश की। बट साहब बेहद शुक्रिया, सुपरस्टार तो आप लोग हैं भाई, आप ही की रोशनी से जगमगाता है स्टूडियो, बेहद शुक्रिया। अगला गीत हम ले जाकर खबरों तक, और खबरों के उस पार हम करेंगे आपका इंतजार।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester.

0: ये गीत ऐसा गीत है कि इसे सुनकर जिसने शायद कभी भी जिंदगी में प्यार करने का ना सोचा उसका भी मन मचल उठता है कि दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, पूछे जो हमसे हाल तो हम सच बता सके।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 128.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और जैसे दो गीत आपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के आगाज में सुने हैं, वैसे ही बहुत सारे गीत अभी और भी सुनवाना बाकी है। लेकिन फिलहाल तो मैं ये चंद अल्फाज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा गीत है। जी हाँ, उल्टे पुल्टे की बात कर रही हूँ। तेरी मेरी निगाहें, तेरी दुनिया है दूर जाना, तेरी मेरी निगाहें, तेरी दुनिया है दूर जाना।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co. Okay. This is Anisa Nasir with The Big Show.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरजू की है और तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है. क्या प्यारा गीत है. बेहद शुक्रिया पसंदीदगी के लिए. और अभी अभी मैंने साजिद रहीम जी का एक शेर आपके साथ शेयर किया. कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो उनके लिए रिपीट कर देते हैं कि दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हमारा हो, पूछे जो हमसे हाल तो हम सच बता सकें. वरना यही कहते ना, हाँ जी बस ठीक है जी, बस जी ऊपर वाले का करम है, सब कुशल मंगल, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह वगैरह. चाहे अंदर से कुछ कितने ही उबाल ना उठ रहे हो. अब गुल जी को लीजिए. गुल जी बिना मतलब हजम नहीं होती उनसे मेरी कही हुई कोई बात. कहती हैं, जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए, जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए निसा, जो हाल पूछे तो बंदा रोना पिटना डाल दे. सही कहा आपने. और कहती आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जो मैंने ठीक करवाने के लिए दी थी. और ये हॉलीडेज की घड़ी मेरे लिए तो बड़ी दूर है घड़ी, लेकिन आप लोग जरूर जा सकते हैं. साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई. कॉन्टेक्ट कीजिएगा साउथ ऑल ट्रेवल को आज ही 0208574 8410. याद रहे, साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
1: ये है
0: Laika Radio.
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Laika Gold Radio, Laika Radio ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Laika Radio मिडलैंड्स पर.

0: शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। कमाले जब्त का ये आखिरी हुनर भी गया, कमाले जब्त का ये आखिरी हुनर भी गया। मैं आज टूट के रोया और उसके घर भी गया। क्या बात है, आप भी कमाल करते हो भाई। और मिसेस के बेहद शुक्रिया, आपको जोक्स अच्छे लगते हैं, खासतौर पर जब मैं बताती हूँ तो। क्या बात है, एक बात बताऊँ आपको। कहते हैं शगुफ्ता दिल बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता दिल बहुत टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। बड़ी गहरी बात है। जी आपको बता देते हैं लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड के बारे में, जिसे होस्ट किया है खुश ने, और बात करेंगी वो मिनाल सांबरे से अबाउट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट रेजिंग डेट्स। तो आप ये एपिसोड्स देख सकते हैं, बल्कि हर एक एपिसोड देख सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा is here. Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m. Like a radio. From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald. Plastic.com.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
6: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. Even if it's a time for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: Advertise your brand on Leica Radio, Greater Manchester, and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: अच्छा तो अब यार वो उस शेर में तो बहुत सारे लोग फंस गए। शहजाद भट्ट जी कह रहे हैं, दुखों और डाकू और डॉक्टर के सामने सच ही बोलना चाहिए। ये डाकू कहाँ से आ गए? बट सब ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं आप। और मैं भी अब जरा ठीक हो जाऊं और आपको बताऊं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में जो उल्टा पुल्टा हम खेलते हैं, गुल जी कहती है मेरे को सीधा गाना नहीं बुझिया जाता, तो तुम उल्टा पुल्टा मेरे को उम्मीद करते हो कि मैं सीधा करके दसांगी। अच्छा आप मत बताइए, बस इंजॉय कीजिए, कोई और अच्छा सा शेर या जोक भिजवाइए, हम सबके साथ शेयर करेंगे। राइट, तारिक साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहते हिसाब में मतलब मैथ्स में अगर दो में से एक निकालो तो एक बचता है, यानी एक माइनस वन, दो में से निकालो एक तो एक बच गया। और मोहब्बत में दो में से एक निकल जाए तो एक नहीं बचता। तारिक साहब आज आप मतलब बड़े वो तप्पे बैठे हैं, खैर है। और वो मेरे जोक पर तो नहीं, मेरे शेर पर भी आपने कहा अच्छा शगुफ्ता, सच्ची बताएं किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं था? ये है Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone. अभी बताती हूँ उल्टे पुल्टे के बारे में। पहले आपको बता दूं कि वन ब्रिटिश पाउंड आज आपको दिला सकता है 129.3 इंडियन रुपीज, 87.5 अफगान अफगानी, 373.7 पाकिस्तानी रुपीज, 165.8 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Punjabi tadka se pehle gold ka tadka. The gold is currently trading at £102.20 per gram.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और भाई सबसे पहले हमेशा ही की तरह मोस्ट ऑफ द टाइम कमल शिवनानी जी आप ही होते हैं हमारे मास्टर, जिसको कहते हैं किंग, राजा ऑफ द आवर। और आज भी आपने अपना रिकॉर्ड जो है उसको बनाए रखा है, बिल्कुल सही पूछा आपने। गीत को उल्लास जी, गीता हर्षद जोशी जी, यारे से करसन पिंडोरिया जी, तोची जी, बस इतने ही सही जवाब बात मुझ तक पहुंचे। लेकिन एक गलत जवाब भी पहुंचाया है सईदा जी ने मेहरबानी करके, ताकि सही जवाब भिजवाने वालों को नजर ना लग जाए। तो सईदा जी ट्राई करने के लिए बेहद शुक्रिया। अभी कुछ ही देर में पंजाबी तड़के के बाद हम आपको वो गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि स्पर्स और वेस्ट हैम की दुख भरी दास्तान मुझे विजय गुरूरी जी सुना रहे हैं, और आर्सेनल और इप्सविच की जो कि लीग मैच है अकॉर्डिंग टू हमारे नीलेश जी, वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मेरा रोना हमारे लिए रह गया विजय जी।
2: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: क्या मजेदार पंजाबी तड़का था. सोबत खान जी आपके भी नाम गया और हमारे शहजाद भट्ट जी आपके भी नाम गया. हमारे राजा ऑफ द आवर ने यानी कमल शिवनानी जी ने एक जोक भिजवाया है और मिसेस के जरा करीब आ जाइए ताकि आप ध्यान से सुन सकें और हंस सकें. लिखते हैं कि एक बंदे ने दूसरे से कहा, एक नई चीज आई है जो ना अगर हम उसके सामने झूठ बोले तो एकदम पकड़ लेती है. मैं ये जोक पढ़ के पहले तो इतनी देर हंसी हूँ और फिर मैंने कहा शायद अब मैं ऑन एयर नहीं हंसूंगी. आफ्टर ऑल आई एम प्रोफेशनल, बट साबित हुआ कि आई एम नॉट. तो एक बंदे ने दूसरे से कहा कि एक नई चीज आई है, अगर हम उसके सामने झूठ बोलें तो वो एकदम पकड़ लेती है. जवाब मिला, मेरी तो कई साल पहले उससे शादी हुई थी.
1: Anisa Nasir, live across Greater Manchester with the Big Show. Like a This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ये था मिस्ट्री गीत जिसे रानी जी आपने भी बूझ लिया। तू मुझे याद करे ऐसा तरीका निकले, मेरी एकतरफा मोहब्बत का नतीजा निकले। इतनी खामोशी से निकले हैं तेरे शोर से हम, जैसे बाजार के मजमे से जनाजा निकले। बहुत शुक्रिया जिनकी बहुत सारी यादें ताजा हुई इस गीत को सुनकर। और एक बहुत ही सैड न्यूज अभी तक जो है वो मेरे जहन से निकल नहीं पा रही, जो कुछ ही देर पहले मेरी नजरों के सामने से गुजरी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी शायद, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भी ना जाने क्या क्या उछलता कूदता रहता है, लेकिन अभी मुझे यकीन दिलाया गया है कि ये सही खबर है। और सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बेस्ड इन लंदन जनाब शौकत डार साहब हैज पास्ड अवे ड्यू टू हार्ट अटैक। Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: From Greater Manchester to Greater London, we are Leica Radio.

0: मुझे जो आंख से ओझल दिखाई देता है, मुझे जो आंख से ओझल दिखाई देता है, वो चुप रहे भी तो मुझको सुनाई देता है। तुम्हारे पाँव में रख दी है शायरी अपनी, तुम्हारे पाँव में रख दी है शायरी अपनी। किसी को कौन यूं अपनी कमाई देता है, भाई अपनी कमाई हमें तो दी है राजदीप जी ने, कहते हैं ये मेरा शेर है जो मैं आपको भिजवा रहा हूँ। और बात कर रही हूँ मैं डॉक्टर राजदीप जी की फ्रॉम देहरादून इंडिया से, कहते हैं लिसनिंग टू यू व्हाइल डूइंग माय रिपोर्ट वर्क। और इतनी रात गए, क्या बात है, आपका स्वागत खैर मकदम जी आया नू हमारे शो में। मंडे टू फ्राइडे मैं 7 से 10 बजे तक यही कुछ करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो साथ निभाइएगा। बेहद शुक्रिया प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए। कहते हैं ये एक शेर मतला फ्रॉम माय गजल, और क्या मतला है भाई, है रात भी लंबी सफर अभी कई मील है, है रात भी लंबी सफर अभी कई मील है, कहीं तो सुनाऊं मेरा किस्सा भी तवील है। क्या बात है, बहुत खूब, बल्कि बहुत ही खूब, बेहद शुक्रिया और एक दफा फिर से आपका हार्दिक स्वागत। लीजिए भी प्रोग्राम के ये पहले दो गीत, एक तो विजय जी ने सुनना चाहा था और दूसरा नैना जी ने। जितनी फरमाइशें मुझ तक पहुंची हैं उतनी ही मैं, मतलब बहुत मुश्किल है कि सारी की सारी जो है वो समो पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सुनवा सकूं।
1: Live across Greater Manchester with the big money from India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you 128.9 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भाई अभी आप इजाजत ही ले रहे हो कि मैं फरमाइश करूं या ना करूं, यहाँ लोग फरमाइशें दे के ठा ठा वो जाओ ये जा, चलिए जल्दी से भिजवाइए, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। दिलीप सरोज जी बिल्कुल आपने सही कहा, आपका जवाब भी बिल्कुल सही था हमारे उल्टे पुल्टे को लेकर, अल्फाज थोड़े से आपने गड़बड़ किए तो मैं उसमें कन्फ्यूज रही, लेकिन एक तो आपने देर से भिजवाया इसलिए भी शामिल नहीं हो पाया, तो माय अपोलॉजी।
1: Get all the latest travel updates for Manchester.

0: और हम देखते रहेंगे उनकी फनकारी के जौहर फिल्मों में, उनकी एक्टिंग, और हमेशा याद रखेंगे वन एंड ओनली जनाब शशि कपूर जी, उन्हीं पर पिक्चर आए ये गीत हमने शामिल किया आर्टिस्ट ऑफ द वीक के तहत। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इंजॉय किया होगा। अब उज़्मा जी आपने बड़ी ही मजे की बात की है, ऑनेस्टली मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। कहती हैं मैंने आपको एक लकब दिया, एक टाइटल दिया है, आप हैं शायरी की चैट जीपीटी। गुड वन। मेरे सुनने वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, मैं क्या बताऊं, जबकि कुछ लोगों का तो नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर इतना क्या कहूं, लेकिन आप मेरे सभी सुनने वाले सच्ची में मजा आता है आपसे बात करो, आपको बात की समझ भी आती है। अब एक को नहीं आई है और उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, मुझे रेडियो वाली ने वो मैसेज फॉरवर्ड किया है और लिखा है आई डिडंट गेट योर जोक लव। तो लव अगर, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा तो आपने मुझे लव कहा तो मैं भी आपको लव ही कहूंगी, तो अगर तो आपको पसंद आता तो मैं कहती हूँ लो जी तो मेरा अपना जोक है, मैंने घर पे बनाया है। लेकिन नहीं जी मैंने नहीं बनाया, आपको पसंद ही ना आया तो फिर बता देती हूँ कमल शिवनानी जी ने भिजवाया था। वैसे मैंने आपके साथ शेयर करते हुए भी बताया था कि कमल जी ने भिजवाया है। तो वो शेर सॉरी जो कुछ इस तरह से था कि एक आदमी दूसरे को कह रहा था कि आजकल एक ऐसी चीज आ गई है कि अगर आप उसके सामने झूठ बोलो तो वो फौरन पकड़ लेती, यानी कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपका झूठ पकड़ा जाता है। तो दूसरे ने कहा अरे लो उस चीज से तो मेरी कितने सालों पहले शादी हो चुकी है, यानी बीवी। अब देखो ना शेर को या जो कुछ इस तरह खुल खुला के उसका बखी उदेड़ के बताया जाए तो फिर क्या खख मजा आएगा, इसलिए जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। क्या ख्याल है, मैं सही कह रही हूँ? तो इसका मतलब है कि बीवी गर्लफ्रेंड पार्टनर मतलब महिला से यानी कि लेडी से आप जो है कोई बात छुपा नहीं सकते, आप समझ आए।
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester.
1: Leica Radio.

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: और लीजिए भी गीत संगीत और बातचीत का सिलसिला जारी है। ये प्यारा सा गीत सुनना चाहता हमारी बहुत ही प्यारी सी मीनाक्षी जी। और मीनाक्षी जी ने भी एक मुझे लकब दिया है, कहती हैं आप शायरी की शेरनी हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज बड़ा प्यार आ रहा है सबको मुझ पे। वैसे हमेशा ही आप प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। लीजिए आप इसी खुशी में बिग बॉस की बात कर लें। बिग बॉस इज बैक। एज यू ऑल नो कि 20th सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, और इस साल भी सलमान खान ही हमेशा की तरह से होस्ट कर रहे हैं। हर रोज 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार पर जो है इसको एयर किया जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss ke 20 house se, Big Boss 20 ke house se. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. तो और क्या कहना था, और बहुत कुछ कहना था। जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि एक तो कटरीना कैफ की तस्वीर आज वायरल हुई है, और दूसरी जमाइमा गोल्डस्मिथ की शादी को लेकर चर्चे हैं। उन्होंने बिजनेसमैन कैमरॉन ओराइली के साथ 20 साल डिवोर्स के बाद जो है अब शादी की है, तो उनको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। और क्या कहें।
3: Laika Radio. Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: This is Anissa Nasser with the big show.
4: Laika Radio.
5: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Laika Radio Network.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11.
5: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963.

0: देखो।
1: प्यार से क्या, अभी तो गुस्से से देखने का भी टाइम नहीं है। और मोहब्बत तो हम कल भी करते थे, आज भी करते और आइंदा भी करते रहेंगे। वक्त आ गया है कि आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं मेरा साथ निभाने के लिए। एज ऑलवेज नवाजिश करम, शुक्रिया मेहरबानी। आप सोच रहे होंगे ना, ये किस बेजा तकल्लुफ में पड़ी हो, छुड़ाओ हाथ जाओ, खुश रहो तुम। और मेरी भी दिली दुआ है कि आप खुश रहें। और आपको खुश रखने के लिए गोल्ड नाइट का जो म्यूजिक है खासतौर पर चुना जाता है, जरूर सुनिएगा। और सुबह काजल आ जाएंगी ब्रेकफास्ट शो लेकर। तो क्या ख्याल है, जाऊं? शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। रब सोने दे हवाले।
2: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: Blackpool, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Grand Theatre Blackpool, Tuesday the 22nd to Saturday the 26th of September. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella guarantees Desi Panto fun for all the family. And with tickets from just £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywood. Radio partner Leica Radio.
2: Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound. Leica.
9: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio, Greater Manchester.

0: Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
1: I left behind everything I knew.
0: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
1: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
0: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान.
8: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जिया हॉटस्टार. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जिया हॉटस्टार.
9: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
10: ये है लाइका गोल्ड 2.

0: ये है लाइका रेडियो। Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
1: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
0: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
1: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
0: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
4: Like a radio.
5: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.